0: व्यवस्था चाउसर गिरुए
1: गेचो छानेला खोरेल चाउसी पोरिए हरिदे तरिम गाई गेजो मेके लैजु अब नजिरे बनाई गेम येल गेजो मेके नलाए औले लायो के नाइए
0: बन्छङ छ जुलिसियो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा र सताउसु छिमे ने चाउसो सैले के खेले या
1: बन्छङ ल नेला कि के माइए नेवला कि नि पाँच जना खर्ना नार मिलि दे बनाई सानो जन ने के सये
0: बत्तास उचली जु बेला त हिजिन के कोटल नेकी सताङ्गीले हेनोखेमा छिन्ने ने चासो के सया
1: ने लागिने निताई के भने के पछि सोनो अरूले भने के बसया
0: के छ थामला पोयाल ने लाग्यो किसनकीले के छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा